0: ध्यान दीजिएगा मैं जो गा रहा हूँ ये संतूर पर बजा के सुनाएंगे आप.
1: This song is reflected in many ways. Time memorial, heart touching, always forever, always forever.